ब्रह्मे थक आए प्रभु की शाम तेन दुदते बाहरी कित ना आवे काम जल बिन शाक मलावती उपजे ना ही दाम हर ना मिलिए साजने

0: नहीं, नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास।
1: शब्द की संपूर्णता की जी गुरु साहब ने, कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। मालका तू किरपा कर भी तेरे दर्शन होण, ते जेड़ी मैनू प्यास लगी उनू तिरता मिले, तरवास मिले। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, रब जी ओ तेरे तो बिना दूजा कोई नहीं। इसलिए नानक की अरदास, आप जी दे सेवक नानक जी की अरदास भी तुहाडे अगे ही है। जदों सुननी तुसी है तो फिर तुहाडे अगे ही करांगे ना, फिर किसे होर अगे क्यों। इस तरह फिर आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, महीना नहीं बदलिया जिवें पहला जिक्र किया, सिर्फ कर्म बदल गए जी। पहला की सी, गुरु बाबा जी कहिंदे जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस, इस करके तप रहे सां। दुई है भाए विगुची है गल पई जम की फास, इस करके तप रहे सां। जेहा बीजा सो लुणे, दुख इस गल दा सी। फिर रहन विहाणी पछताणी, उठ चली गई निराश, इस करके तपश है। पर अगे हुण कर्म बदल गए, जिन को साधु भेटी है, गुरु मिल गया से दरगाह होए खलास, बच गए। कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। तेरे अगे अरजोई है तेरे दर्शन होण, मैनू प्यास मैनू तिरता मिले। फिर प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास, मैं अरदास तेरे अगे कर दा क्योंकि तेरे तो बिना है कोई नहीं। जदों एक कर्म जिंदगी च बन गए, फिर आषाढ़ सुहंदा तिस लगै। सिर्फ इको शब्द दी, तपंदे तो सुहंदा, आषाढ़ सुहंदा तिस लग, उन्हू लगदा किनू जेड़ा कहिंदा प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। ओदे लई सुहंदा है जेड़ा कहिंदा मालक जी मैनू गुरु का मिलाप होया ते मैं बच गया। ओदे लई सुहंदा है जेड़ा कहिंदा मैनू तेरे दर्शना दी प्यास है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। जिन्हां दे मन विच अकाल पुरख परमेश्वर दे चरणां दा वासा हो गया, मतलब जिन्हां दे मना विच उहदी याद टिक गई, उहनां दे लई फिर आषाढ़ सुहंदा सोहणा बन जांदा है। गुरु बाबा जी कृपा करन, आषाढ़ दे महीने दी अज आरंभता होई है। सतगुरु रहमत करन, मलक पातशाह दे दित्ते उपदेश मुताबक असानू जिउण दी जाच आ जाए, असीं भी अपने मना अंदर उस अकाल दी याद नूं टिका सकीए, उहदा चिंतन उहदी याद हिरदिआं विच टिक जाए। साडे भी ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शणी, आओ गुरु बाबा जी के पावन बचन अपने हिरदिआं विच वसा लईए।
0: कर किरपा प्रभ अपनी,

0: नहीं, नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास।
1: वाहिगुरु जी का खालसा,

मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धाओ हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सही मिल संगत गुण प्रगास जिना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रागुजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता कोई ना किसकी तरया सिर से

गया सा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगम अगम अपारा सब थे आवें सब थे आवें तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आव हो संतो जी सब दुख मिसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहे हर ते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तपे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उबाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दहे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुग वाया तुदे आप विछोड़या आ मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहीं

के गयो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छड के गयो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तावाया सै सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवाहर परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना सवना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा घरता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसा वाए नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन ऐ वसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुदवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित हर अनहद वाजे आनंद सुनहो वड्डे भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते बोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पोनी कहते पवित सत

मुंदामणी महला पंजवां थल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब।

काज सवारन हार महला दूजा रात कारण तन संचिए पलके चलन होए नानक नाल न चलई

पाई जे बहुता कल्ले तरफ जिने सत पाओ दे जननौन कुछ शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई।

जुग चारे सब पव थकी के नकी मत होई सतगुर एक बखल्या मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलहिए करता करे सो होई जुग चारे सब पव थकी किन कीमत होई सतगुर एक बखल्या मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलहिए करता करे सो होई। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म पिट बलेरी रुत विसें चसें खड़िया पैरों तिथि बारी मां हुआ सूरज को रुत ने नान करते के किते वे महादेव समूरत पले जिसको नदर करे नान मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिनी खोल कपड़ गुर

आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास

प्रकाश ग्रंथ उन्होंने इतिहास की लड़ी नूं अगां तोरिया। लड़ी नूं तोरदियां होया कवि जी ने जिक्र किया जदों सिख संगतां दे कोलों सतगुरु जी ने बचन सुने ना कि गुरु के कीर्तनियां ने बड़ी सुर दे विच बड़ी ताल दे विच राग आधारित पावन बाणी नूं गाया, बहुत आनंद आया। गुरु साहब ने सुन के ते एक बचन किया अपनी रसना तो उथे, भाई कही लुपाई कही। हुण इथे दो वारी कही शब्द वरते है, भाई कही लुपाई कही। एक वारी कही दा मतलब ते आखी, ते एक वारी कही जिहड़ी आपां एक औजार वजों वरतदे आ उह कही। कहिंदे वी जिन्ने आखी है उन्ने लकोई है। हुण सतगुरु ने उत्थे दृष्टांत बहुत प्यारा वरता ना, अक्सर ना जी आपां एक वचन गुरु साहब दा पढ़दे आ रोज़ाना, आशा की वार दी पावन बाणी जदों पढ़ीए ते आशा की वार दे विच धन गुरु रामदास पातशाह जी दा पावन बोल है, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर। गुरु रामदास पातशाह दा शब्द है, नहीं हर हर भीजै राम राजे। हुण कर की कहिंदे, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे। फिर अगली पंक्ति, जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजै। हुण गुरु रामदास पातशाह दे बोल ने, सतगुरु ने यह नहीं कहा भी कोई गा नहीं रहा। गुरु साहब कहिंदे गा रहे ने और बड़े सुर दे विच बड़े ताल विच गा रहे ने। हुण कल्ला इत्थे उसे पक्ष नूं ना वेखीए भी रागी नादी ना भी कोई रागी गा रहे गुरबाणी कीर्तन। हो सकता विचार करन वाला प्रचारक भी होवे, पाठ पढ़न वाला बाणी पढ़न वाला ग्रंथी सिंह भी होवे, कोई हो सकता है। जिहड़ी कंडीशन रखे कहिंदे जिन्ना अंतर कपट विकार है, वह बाणी पढ़न वाले दे अंदर भी हो सकता है, पाठ करन वाले ग्रंथी सिंह दे अंदर भी हो सकता है, विचार करन वाले दे अंदर भी हो सकता है, कीर्तन करन वाले दे अंदर भी हो सकता है। किसे दे जिहदे अंदर कपट विकार है, गुरबाणी कीर्तन करन वाले की कर रहा जी, करते गुरु जस ही रहे हैं ना। विचार करन वाला की कर, गुरु जस कर रहे, ते ग्रंथी सिंह पाठी सिंह बाणी पढ़न वाले की कर रहे, गुरु जस बाणी पढ़ रहे। सतगुरु कहिंदे जे बाणी पढ़दे आ भावें गाउंदे आ ते भावें विचार करदे आ अंतर कपट विकार है, फिर सजना तेरी गावी तेरी विचारी ते तेरी पढ़ी तिन्ना रोए क्या कीजै। मतलब कहिंदे फिर तेरा रोना उत्थे की करेगा। मतलब जे कपट विकार रख के बाणी गा रहे हैं बाणी पढ़ रहे हैं बाणी विचार रहे हैं, फिर ए ना सोची भी रब प्रसन्न होएगा या गुरु प्रसन्न होएगा, फिर ये नहीं। हाँ, ये हो सकता है भी जिहड़ा कन रस बना के सुन रहे है उन्हूं बड़ा आनंद आवे, पर जे अकाल पुरख के जस गुरु की प्रसन्नता वास्ते फिर नहीं। इसे भाव विच हुण संगतां ने बड़ी प्रशंसा की, सतगुरु ये भी जानते ने भी जेड़े कीर्तन करन वालियां दी प्रशंसा संगत कर रही है वह अवस्था किस विच ने। मतलब कहिंदे भाई कही लुपाई कही। हुण सतगुरु ने शब्द वरते जदों धन गुरु कलगीधर साहिब उच्ची आवाज दे विच अपने मुख तो यह

आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। जंपो गुण विमल जंपो गुल विमल सतसंगत, जंपो गुण विमल सुज।

करे। सतगुर मत गूढ़ बिलमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाश्या नाम अपै निरंजन करहै लहा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ राया तिस प्रसाद

0: दुर्त दुरंतर नास है, गुरु जिनको सो प्रसन्न, मान अभिमान निवार है, जिनको गुरु सो प्रसन्न, शब्द लग भव जल तार है, परचो प्रमान गुर पायो तिन सके अथो, परचो प्रमान जिन गुर पायो जिन सके अथो भव जन्म जग, श्री गुरु राज शरण, श्री गुरु शरण भज कल कब, भुगत जुगत सब गुरु लग।
1: सतगुर खेमा तानिया जुग जूत माने, अनभो निजा नाम टेक जित भगत अगाने, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने, जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचरे अबरा सर भरिया, अकथ कथा अमरा पुरी।

0: कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसनार सो जुग जोर कर फुन मन बच क्रम जान अनत दूजा ना मान नाम सो अपार सार तीनो गुर रिद तर नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तखत दियन गुर राम दास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारण मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगण देखत गत चरण कवल जा सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुर राम दास
1: गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासै जिनको गुर सो प्रसन्न गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासै जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दुरंतर नासै गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारै जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग भव जल तारै परचो प्रमाण गुर

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, सर्व सांझी वालता दे रहे पर बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीयां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दियां हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने साडे सभनां दी झोली दे अंदर पावन हुक्म दी दात पाई है, सो पावन हुक्म सोही राग दे अंदर तीजे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जीयां दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 769 अते 770 अंग दे उपर सवाईमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं किहड़ियां बख्शिशां दे नाल निवाजना करदे ने, आओ प्यार सतिकार प्रेम दे विच भेज के सरवण करना करिए जी। सूही महला तीजा, जुग चारे तन जे पवै, बिन सतगुर सुहाग न होई राम, निहचल राज सदा हर केरा, तिस बिन अवर न कोई राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की